0: बाबा आपका चिंटू आ गया।
1: स्विच ऑफ करो जरूर ये मोबाइल को, उसको काहे से जे भी सारी समझ सदा।
0: चिंटू
2: हाँ वैसे यार
0: पढ़ा हूँ
2: 12 घंटा में तो मोबाइल जो बोली
0: अब मैं तुझे
2: प्रोसेसिंग बिल्कुल
0: नहीं करती है। कंधों पे कैसे पड़ा

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: जी गाना बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना।
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
4: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का। मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ बने रहे। बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
2: बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता, नहीं आ रहेगा कुछ। बोलो यार, छोड़ो यार सर, मेरे को
6: गाने का इक्वल वैल्यू है।
5: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना।
7: अगर तू समझ नहीं रहा है ये हिट गाना है तो एक और नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम टीली खेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है आक्रमण और गाने की बोल है ये मौसम आया है कितने सालों में।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश है तो।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते
1: नमस्ते सर। चौधरी आज कर रहा हूँ। आज फिल्म
0: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज।
1: का नाम है आवारगी
0: जी। गाना
1: गाने के बोल हैं, वाली उम्र में मेरा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों, आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं आपका।
1: मेरा नाम नंदिनी पटेल है, मैं पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: नंदिनी जी कैसे हैं आप?
1: मैं सर अच्छे हैं।
0: अच्छा, बरसात हो रही है क्या आपके पिपरिया सागर में?
1: नहीं हो रही।
0: अच्छा बताएं गुड़िया, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मेरे देश पवन चल रहे
0: पुरवाई।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
4: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
5: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार।
4: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
5: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में। व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाएं।
6: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
4: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

0: हेलो,
1: जी नाम बताएं। पायल
0: पायल अग्रवाल नाम है। गंगापुर
1: जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं
0: सिटी दयाल नगर से। सावन
1: पायल जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: आया बादल छाए, प्लीज लगा देना। कौन सी जगह आता है आपका हमेशा?
1: बिल्कुल बिल्कुल पायल जी, फोन तो चालू रखते हैं उठाए फोन का फोन पकड़ने का और लगा रहे आपका गाना रेडियो। आपने कॉल किया, बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है,

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो
1: अंकल।
0: जी, नाम बताएं आपका। नीरज कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन
1: गंगापुर
0: सा गाना सुनना चाहते हो आप?
1: गई सारी दुनिया छोड़ के। अरे
0: और ले मैं सैया आ गई सारी दुनिया छोड़ के, किधर बुलाया है सैया ने? गाना लगाना है क्या? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
4: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
5: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में, सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
4: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
5: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
6: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
4: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

0: आप इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
1: अभिषेक मीणा।
2: अभिषेक जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मीणा हाईकोर्ट करोड़ी बाबा।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पे।

0: प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा। इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
1: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार।
0: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
1: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में। व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाएं।
2: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
0: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: जी सर नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताएं।
1: जी मैं सुनीता बोल रही हूँ।
0: सुनीता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सुनीता जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: सर मुझे गाना सुना दीजिए, मैं क्या थी, मैं कैसे क्या होगी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी सरप्राइज का गाना है रेडियो डीएस में, बोल के आपने बहुत बहुत।
1: धन्यवाद सर, थैंक यू।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: हेलो
4: हेलो,
3: नाम बताएं सर।
4: आदिवासी दिवस का सॉन्ग लगा दो मीना की।
3: क्या नाम है सर आपका?
4: सोनू मीना।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: नसिया कॉलोनी।
3: सुना रहे हैं सर आपको, आपकी सुनाई करता।
0: दशमलव 6 की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जय बिरसा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान। समस्त आदिवासी समाज, माताओं, बहनों, युवाओं एवं प्यारे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। विश्व आदिवासी दिवस के पावन अवसर पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राजस्थान द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय आदिवासी महासम्मेलन दिनांक 9 अगस्त 2026 स्थान रेलवे संस्थान लोकोशेड सवाई माधोपुर जंक्शन राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है।
1: इस भव्य समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्री सोमजी भाई डामोर, कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री फगन सिंह कुलस्ते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सावरमल झरवाल, श्री शंकरलाल बाड़ो सहित संगठन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल श्री केसी घुमरिया जी करेंगे।
2: कार्यक्रम में पेसा अधिनियम, वन अधिकार कानून, जल, जंगल और जमीन के अधिकार, आदिवासी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आरक्षण तथा समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही डुंगरी बांध, समरावता कांड, खंडार एवं चौथ का बरवाड़ा बालिका छात्रावास सहित स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
1: समारोह में समाज एवं सर्व समाज के उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं और प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। बिरसा मुंडा समाज गौरव पदक, बिरसा मुंडा सम्मान पदक, कार्यकर्ता सम्मान पदक तथा बिरसा मुंडा प्रतिभा सम्मान पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपरा को समर्पित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, लोकगीत, कविता पाठ, महिला एवं बाल प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी।
2: विशेष आकर्षण आदिवासियों की आवाज पत्रिका के चौथे अंक का भव्य लोकार्पण भी इसी समारोह में किया जाएगा।
1: आइए विश्व आदिवासी दिवस के इस ऐतिहासिक आयोजन में अपने परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर समाज की एकता, संस्कृति, अधिकार और विकास के संकल्प को मजबूत बनाएं। आपकी उपस्थिति ही इस महासम्मेलन की सबसे बड़ी शक्ति होगी।
2: दिनांक 9 अगस्त 2026 स्थान रेलवे संस्थान लोकोशेड सवाई माधोपुर जंक्शन राजस्थान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 94-13-49-58 या 98-87-94-44-07।
1: निवेदक अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राजस्थान एवं संपूर्ण मीना समाज सवाई माधोपुर। जय बिरसा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वर, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
7: हेलो
8: हेलो
7: जी, नाम बताएं।
8: राघव सेन
7: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
8: गंगापुर सिटी से।
7: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
8: कालो कूद पड़े हो मेला में।
7: काला कूद पड़े मेला में?
8: हाँ
7: बिल्कुल, सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो DS में खुल के। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन। आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
2: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
1: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
2: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
3: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
1: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो
1: जी, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं।
1: जी सर, रवि गुजर।
0: अभी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी सर, सालोदा मोड़ गंगापुर सिटी।
0: बताएं जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जी सर, एक मुलाकात जरूरी है सनम, सिर्फ तुम फिल्म का है।
0: बिल्कुल, सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश के सॉन्ग रेडियो डीएस में। खुल के धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, क्या नाम है?
1: मेरा नाम दिव्या
0: है जी। क्या नाम है आपका? नाम बताओ पहले। गंगापुर की से कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? कौन सा गाना है सर? आप गाना सही बताओ सर, गाना समझ में नहीं आ रहा आपका।
1: बाल ऐसे चमकते जगेंगे जगना।

0: चैंपियंस म्यूजिक।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं
1: सर। आप पूछते तो ऐसे और सुनाते हैं नियो सॉन्ग में।
0: क्या नाम है आपका?
1: शिवी मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे धुरंधर सिंह का सॉन्ग सुनना है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आप जो आपकी फरमाइश से गाना रेडियो डी में खुल के धन्यवाद।
2: पब्लिक सेकेंडरी स्कूल आपके बच्चे को देता है।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब साइंस लैब विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियाँ
6: हेलो
7: हेलो
6: जी नाम बताएं
7: गुलशन
6: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं
7: गंगापुर सिटी
6: बताएं गुलशन जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
7: थोड़ी कवारी तेरे पीछे पीछे जाता कहाँ है सोनिया
6: बिल्कुल सुना रहे हैं मैं फरमाइश करेगा
7: हेलो
6: जी नाम बताएं
7: सेनाज
6: सेना जी कहाँ से बात कर रहे हैं
7: एंटी कॉलोनी गंगापुर सिटी
6: बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
7: तुम्हें नहीं मुझको बारिश पसंद है
6: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का सॉन्ग
8: Our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: जी नाम बताएं।
3: सेनाज।
2: सेना जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: एंटी कॉलोनी गंगापुर सिटी।
2: बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: नहीं मुझको बारिश पसंद है।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का सॉन्ग।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं, कहाँ
0: सर, मंजूर अली खान,
1: से बात कर रहे हैं सर?
0: गंगापुर सिटी सर। सर
1: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गाना वो है दीवाना दीवाना मैं तेरा दीवाना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के सॉन्ग। रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते सर, आपकी आवाज कम आ रही है, नाम बताएं।
1: आपका मौसम खराब हो रहा है
0: जी। नाम बताएं आपका।
1: पंडित राम गुजर बोल रहा हूँ। राम
0: सर बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: सर गाने बोल रहे हैं, क्या देख रहा है यार।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: जी नाम बताएं।
0: हाँ सर, अंजना शर्मा बोल रही हूँ।
1: नमस्ते अंजना जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: सर गाने के बोले पहली बारिश में और तू।
1: बिल्कुल अंजना जी, सुना रहे हैं आपकी। गाना
0: थैंक यू सर।
1: बढ़िया।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नाम बताएं।
1: नाम सुशीला,
0: सुशीला जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: करौली फाटक गंगापुर सिटी।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मेरे सतगुरु आए पामना।

0: कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: घोड़ा से लंबी रेस।
2: कबीरा।

0: हेलो
1: हेलो संजू।
0: जी, नाम बताइए सर। हाँ
1: संजू
0: जी,
1: गंगापुर
0: संजू जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिटी
0: बताएं संजू जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कॉलेज लाइफ।

0: जी नाम बताएं।
1: अली।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ईसा हो का दिल।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी सवाई से।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: तब आपका ये फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में खुल गया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हेलो रेडियो डीएस।
0: यस सर, नाम बताएं।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, नाम बताएं।
1: सारामपुर से डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र। कैसे हैं सर आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं सर, आपका नाम बताएं।
1: जी तारामपुर से हम चिट्ठी के सनो करते हैं, देश के कार्यक्रम बहुत शानदार बारदार दर्जेदार होते हैं सर, कार्यक्रम हम सुन पाते हैं सर।
0: जी गीताराम जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर से हमसे जुड़े हैं। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे देश के गाना सुनने लगा, काले मेजा पानी तो बरसाओ, ये गाना सुना दो सर।
0: बिल्कुल बता रहे हैं सर, सुना रहे हैं, मतलब आपका ये फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नाम बताएं।
1: सुमन
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं वापस सुनती
0: बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बोला मेरा के बाद छाती पक रखे दादी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी प्रोवाइड गाना रेडियो डीएस में खुल के। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: gravity in the beat.
1: हेलो जी, नाम बताएं। शिवम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: नशा कॉलर ले
1: जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: मासूम शर्मा का।
1: जी
2: मासूम शर्मा का।
1: अच्छा, बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका।

0: अमन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम गंगापुर सिटी से बात कर रहे हैं, नशे कॉलोनी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: पागल
0: सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ही गाना।
1: थैंक यू सर।
2: अज 14 साल बाद मुड़िया हाँ उन आरामां ते, देख के उही हवावां क्यों अज वधियां सावां ने। काश जे मिल जे तू ता जिंदगी सफल हो जावे, तू गीत मेरे दा कला कला लफ्ज़ हो जावे।

0: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: आसाराम जागा सर।
0: आसाराम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: राजा राजा रेटो चले आएंगे बिहारी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के।
1: थैंक यू।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:23 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फॉर माई सिटी 99.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
1: अंकित।
2: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तुम ही आना।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से। गाना रेडियो डीएस में फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो

0: हेलो
1: सर नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं।
1: शालू नाम है मेरा सर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगा को सिटी से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तेरी गलियों से उठेगा जनाजा जब मेरा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश से गाना।

0: तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो?
1: अब हम नहीं मिल सकते।
2: नहीं मिल सकते।
1: I'm so sorry, but
3: अरुण जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी।
3: पता है सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: ऐसा गाना सुना दो जिसे बारिश रुक जाए।
3: बारिश रुक जाए? सर अगर गानों से बारिश रुकती रहती तो लोग, आपको पता है ना कैसे कैसे गाने बना देते हैं। कोशिश करता हूँ मैं, आपकी फीलिंग की इज्जत करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा गाना सुनाने की।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए सर।
1: सर राहुल मीना।
0: राहुल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी नाचिया कॉलोनी।
0: बताएं राहुल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: दिल दे रहे थी।
0: बिल्कुल सुना।

0: हेलो जी, नाम बताएं।
1: विवेक मीना।
0: विवेक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं विवेक जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? गाना बताएं सर।

0: आपको?
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं आपका?
1: मेरा नाम नंदिनी पटेल है, मैं पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: नंदिनी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं सर अच्छे हैं।
0: अच्छा, बरसात हो रही है क्या आपके पिपरिया सागर में?
1: नहीं हो रही।
0: अच्छा बताएं गुड़िया, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मेरे देश पवन चले
0: पुरवाई। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: सिक्स्थ क्लास में।
0: अच्छा हाँ, तो सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है आपको?
1: क्या
0: सबसे बढ़िया कौन सा सब्जेक्ट लगता है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित?
1: मैथ से अच्छा लगता है।
0: मैथ अच्छा लगता है क्या? चलो गुड़िया, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना, और कॉल करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।

0: जीवन अप
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे।
4: प्यार से प्यार पर ही जाते। श्री अकाल सर जी।
5: सत श्री अकाल, कैसे हैं सर आप?
4: ठीक ठाक सर जी, प्यार से सत्कार पर ही सत श्री अकाल बुलाता हूँ जी।
5: आपको भी सत श्री अकाल सर। पहले तो सबसे पहले सुनने वाले सभी भाइयों को आपका परिचय बताएं।
4: हाँ जी बताता हूँ जी, बताता हूँ। मैं जी पिंड मौड़कोद डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोलना सर जी।
5: जगजीत मट्टू जी बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
4: सर जी पहला मैं एक खुशखबरी बताता हूँ जी, हमारे पंजाब में बारिश हो रही है जी। आप
5: जी आज हमारे राजस्थान में और सवाई माधोपुर जिले में और गंगापुर सिटी तहसील में भी बहुत अच्छी बरसात हो रही है सर सुबह से।
4: ठीक है जी छोकरा जी, होर जी बढ़िया जी। हम आप फसलों की लोड़ है जी पानी दी, है ना जी।
5: जी बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं जगदीश जी?
4: सर जी पहला तो सर जी पलक बेटी को हमारे सत श्री अकाल बुला देना, ठीक है ना जी?
5: बिल्कुल बताएंगे सर।
4: हाँ जी सर जी, एक पंजाबी सॉन्ग है जी, उस सिंगर का नाम है जी कुलदीप मान साहब
5: जी।
4: ये सर जी साढ़े अपने पंजाब के उगे लोग गायक जी, मैं मोहम्मद रफी साहब ना जी, ये कलिंगा के बादशाह श्री कुलदीप मान साहब जी हैं जी। पंजाब इन्हों बहुत चाहता है जी।
5: बिल्कुल बिल्कुल सुना रहे हैं सर कुलदीप मान।
4: अच्छा जी मैं गीत बताऊं जी?
5: हाँ जी बताओ गीत बताओ।
4: हाँ जी, वो चादर है जी, चादर चादर इसका नाम है सॉन्ग का, चादर
5: चादर बिल्कुल।
4: हाँ जी तो सर जी कल को संडे है जी अपना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ।
0: हारून जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जिला विदिशा नगरी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: फिल्म है तड़ी पार।
0: गाने के बोल बताएं सर।
1: आपकी दुश्मनी कबूल मुझे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में। खुल के धन्यवाद।

0: मुझे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम
0: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो

0: सिटी का तड़का है।
1: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और इस कार्यक्रम को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगला कार्यक्रम लेके आते हैं आपका मनपसंद नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: ये भट्टियाँ हैं, इसके अंदर लकड़ी और कोयला भर के इसके अंदर बड़े बड़े कड़ाहों के अंदर तेल और पानी उबाल देते थे। इनको जय सिंह के छोटे भाई विजय सिंह को यहाँ पे कैद किया गया था। दो हॉर्स राइडर एक साथ दो घोड़ों पे बैठ के पूरी फोर्ट की वॉल के ऊपर पेट्रोलिंग कर सकते। डबल झंडा यहाँ पे जब ये लगता है जब राजा जयपुर में होते हैं, अगर जयपुर से बाहर चले जाते हैं तो सिंगल झंडा रहता है, एक हटा देते हैं, लेकिन दोनों झंडे बराबर नहीं होते, एक बड़ा उसके ऊपर एक क्वार्टर होता है। लास्ट में जो बचती थी उनको अफगानिस्तान के अंदर ले जाके गजनी शहर के अंदर एक दो दिनार करके एक चबूतरा है, वहाँ जाके उनको दो दो दिनार के अंदर हिंदुस्तानी लड़की औरतों को वो लोग बेचते थे। हाँ दोस्तों, आज हम लोग खड़े हैं जयपुर के किले जयगढ़ में, और जयगढ़ जो है काफ़ी पुराना किला है। जयपुर में अकेले जयपुर में चार किले हैं, नाहरगढ़ है, आमेर है, मोती डूंगरी फोर्ट है, जयगढ़ है, लेकिन चारों फोर्ट में सबसे पहले ये फोर्ट बना था। चार जो फोर्ट है जयपुर में, इसमें दो फोर्ट आज भी जयपुर रॉयल फैमिली के अंडर में, जो यहाँ के राजपूत राजा रूल करते थे उन्हीं के अंडर में, उसमें जयगढ़ फोर्ट है और मोती डूंगरी फोर्ट है, नाहरगढ़ और आमेर गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन ये जयगढ़ फोर्ट जिसमें हम लोग खड़े हैं, ये चारों फोर्ट में सबसे पुराना फोर्ट है, सबसे पहले बना था। 11वीं शताब्दी में ये किला बन गया था। इसको बनाया था एक राजपूत किंग काकिल देव ने। काकिल देव जो भगवान राम के लड़के कुश के वंशज थे, कुश के वंशज यहाँ के राजा थे, लव के वंशज राजस्थान में। महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप, बापा रावल, महाराणा सांगा, मार्जोप नेपाल, मार्जोप थाईलैंड, मार्जोप सिक्किम, मार्जोप जापान, छत्रपति शिवाजी, किंग ऑफ जोधपुर, ये लव के वंशज थे। कुश के वंशज थे किंग ऑफ जयपुर, किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ करण सिंह, किंग ऑफ अमेठी ऑफ बरेली यूपी, किंग ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, ये कुश के वंशज थे। तो कुश के वंशज या के राजा थे, इसलिए भगवान राम जो फ्लैग लगा, राम का जो फ्लैग होता था सफ़ेद कलर का फ्लैग, वो फ्लैग उसमें उगता हुआ सूरज और कचनार का पेड़ होता था, वही फ्लैग इनका होता था। काकिल देव ने फोर्ट 11th century में बनाया था। राजा काकिल देव जिसने 1036 में इस फोर्ट की नींव रखी थी, और 11th century यानी 1036 से लेकर आज तक 21st century तक रेगुलर एक ही डायनेस्टी के अंडर में रहा है। न कभी ये मुगलों के अंडर में था, न कभी ब्रिटिश के अंडर में था, न अभी डेमोक्रेसी के अंडर में है। अभी भी जयपुर के राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी है, राजा ने इसके एक ट्रस्ट बना रखी है, ट्रस्ट मेंटेन करती है, उसके हेड वही है। 700 साल तक लगातार यहाँ के राजाओं का जो फ्लैग था वो सफ़ेद कलर का होता था, जो भगवान राम का होता था, लेकिन 400 साल पहले यानी 16वीं शताब्दी में महाराजा मानसिंह यहाँ के राजा थे, राजा काकिल देव के ही वंशज थे। मानसिंह 16वीं शताब्दी में थे, अकबर के कमांड ऑफ चीफ भी थे और यहाँ के राजा भी थे, और राजा मानसिंह ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था। उस समय अफगानिस्तान 5 टुकड़ों में डिवाइड था, काबुल, कंधार, बलख, गजनी और तजाक, काफ़ी खूंखार कबीले थे। मानसिंह की ताकत से भयभीत होकर अकबर ने मानसिंह को कमज़ोर करने या मरवाने के लिए अफगानिस्तान पे अटैक करने का आदेश किया था, ताकि मानसिंह अगर ख़त्म हो जाता तो उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। ये अफगानिस्तान विजय की याद है, ये विक्ट्री ऑफ अफगानिस्तान है।
1: अच्छा, ये वाला झंडा,
0: ये वाला झंडा, इस झंडे के अंदर 3 नहीं 5 कलर, ये पचरंगा झंडा, ये अफगानिस्तान की विजय की याद दिलाता है। और यहाँ पे डबल झंडे जब ये होते हैं जब राजा जयपुर में होते हैं। ये फोर्ट आज भी राजा के अंडर में, इसलिए राजा का झंडा लगता है, पचरंगा झंडा लगता है। डबल झंडा यहाँ पे जब ये लगता है जब राजा जयपुर में होते हैं, अगर जयपुर से बाहर चले जाते हैं तो सिंगल झंडा रहता है, एक हटा देते हैं, लेकिन दोनों झंडे बराबर नहीं होते, एक बड़ा उसके ऊपर एक क्वार्टर होता है, सवा झंडा होता है, बिग एंड क्वार्टर। सवा झंडा इसलिए लगाते हैं कि यहाँ के राजा जय सिंह को औरंगजेब ने यह टाइटल दिया था कि अगर मैं हिंदुस्तान का शेर हूँ तो जय सिंह मेरे से ऊपर, वो सवा शेर है। ये आराम से नहीं दिया था, जय सिंह ने औरंगजेब को घुटने पे ला दिया था, उसको रोने पे मजबूर कर दिया था, उसकी ये हालत कर दी थी। उसके बाद औरंगजेब को जय सिंह को, ये औरंगजेब ने जय सिंह को टाइटल दिया, देने के लिए मजबूर कर दिया था जय सिंह ने, तुम मेरे वास्तव में मेरे से ऊपर हो, सवा शेर हो। ये क्यों दिया था मैं आपको बाद में बताऊँगा। सामने हमारी जो एक काली सी बिल्डिंग दिख रही है, इसका नाम विजयगढ़ी है। विजयगढ़ी ये कोई विजय का गढ़ नहीं था, लेकिन राजा जय सिंह जिन्होंने जयपुर शहर बनाया था, सवाई जय सिंह सेकंड, उनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह था, और विजय सिंह ने बहुत बड़ी गलती की थी, राज परिवार के लिए बड़ी गलती की थी और राज परिवार की इज्जत दांव पे लगाने की कोशिश की थी। तो महाराजा जय सिंह ने अपने छोटे भाई को ही इस जेल में बंद कर दिया था, और अपने स्वाभिमान को रक्षा करते बंद करने के बाद किले के अंदर ही एक मौत का कुआ जहाँ पे फांसी लगती थी, फांसी की सज़ा होती थी, वहाँ ले जाकर उनको फांसी देके मारा गया था, क्योंकि स्वाभिमान से इज्जत से बड़ा इनके लिए कुछ नहीं था। तो अपने भाई को भी अपने बेटे को भी ये लोग, अगर स्वाभिमान पे जहाँ पे आँच आती थी या देश और धर्म पे आँच आता था, उस समय अपने भाई को, बच्चों को, किसी को नहीं देखते, उनके लिए स्वाभिमान, उनके लिए देश, उनके लिए धर्म सब कुछ था। तो विजय सिंह को, जय सिंह के छोटे भाई विजय सिंह को यहाँ पे कैद किया गया था, इसलिए इस जेल का नाम, ये जेल थी पहले, इस जेल का नाम विजयगढ़ी रखा गया बाद में, वैसे जेल थी पहले। ये सामने जो टूटी

0: जयगढ़ फोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण है, और उससे छोटी तोप अगर जयगढ़ में है उसका नाम है बजरंग बाण। बजरंग बाण तोप को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, लेकिन जयबाण को नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि जयबाण दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। 50 टन उसका वजन है, 50,000 किलो उसका वजन है। उसको एक एक पार्ट ले जाकर सबसे उस जगह पर असेंबल किया था। लेकिन सेकंड बिगेस्ट तोप जो जयबाण है, उसको 32 बेलों से खींच के चढ़ा के बुर्ज के ऊपर चढ़ाते थे, और वो 360 डिग्री पे घूम सकती थी, चारों तरफ घुमा के दूर दूर तक फायर करके दुश्मन के आने वाली सेना को रोक सकते थे उसे। इसलिए बजरंग बाण का ये स्टैंड है।
1: अच्छा, ये वाला बुर्ज,
0: ये वाला जो बुर्ज है, ये बजरंग बाण जो तोप है उसका स्टैंड है। ऊपर रखते थे ताकि दीवार से गोले टकराए नहीं, ऊपर होने की वजह से चारों तरफ 360 डिग्री पे घुमा के चारों तरफ दूर दूर तक फायर कर सकें। और ये जो बगल में दिख रहे हैं, ये दिख रहा है जैसे कुएं जैसे कुछ है, कुआ होगा, लेकिन ये कुएं नहीं है, ये भट्टियाँ हैं। यहाँ से अब ये बारिश का टाइम है, काफ़ी घास उग गई, नहीं तो इसके अंदर लकड़ी और कोयला भर के इसके अंदर बड़े बड़े कढ़ाओं के अंदर तेल और पानी उबालते थे। ये भी भट्टी है, इसके पास में दूसरा भी ये भी भट्टी है, इसमें भी काफ़ी घास उग गया समय के साथ में, काफ़ी टूट गए, जर्जर हो गए। ये भी भट्टी है जिसके अंदर तेल और पानी बॉईल करते थे, उबालते थे। देखिए यहाँ से रास्ता है जहाँ से कोयले और आग भर के इसमें उसको गर्म करते थे, उसको उबालते थे, तेल और पानी को उबालते। क्यों थे कि किले में जितनी भी दीवारें हैं उसमें कुछ होल ऐसे हैं जो गर्म पानी और तेल और तेजाब डाल के दुश्मन को चढ़ने से रोकने के लिए। वो होल कैसे होते थे मैं नज़दीक से बताता हूँ आपको। पहले देखिए बड़े जो सामने होल है किले की दीवार में, क्योंकि किला है, डिफेंस के लिए बना था, रहने के लिए नहीं बना था। इसमें आर्मी रहती थी, पानी, खाना, गोला बारूद का बड़ा स्टोर रखते थे। लड़ाई के टाइम में हर होल पे एक एक सैनिक खड़ा होता था। ये जो बड़े होल है, यहाँ पे छोटी वाली तोपों को लगा के रखते थे, छोटी तोप जिनके रेंज करीब 5 किलोमीटर तक होती थी। अगर दुश्मन की सेना आ रही है, देखो यहाँ से सामने आमेर की वॉल दिखाई दे रही है, सामने लेक आमेर महल के सामने वाला जो माउंट है लेक है वो दिखाई दे रहा है, और आगे तक पहाड़ के बाद भी काफ़ी प्लेन जगह दिखाई दे रही है। अगर वहाँ तक भी दुश्मन की सेना आ रही है तो यहाँ से आराम से वो देख सकते थे, यहाँ से तोपों से फायर करके दुश्मन को आती हुई सेना को रोक सकते थे, उनको काफ़ी मार सकते थे। नज़दीक आने के बाद यहाँ पे गेट होते थे जो मैं आगे दिखाऊंगा, वो बंद करके ये छोटे वाले होल है, यहाँ से बंदूक और तीरों से निशाना लगाते थे। ये एकदम सेफ थे, इनकी डिज़ाइन ऐसी बनी है, बाहर से काफ़ी नैरो है, अंदर वाइड है, और 8 डिग्री एंगल पे डाउन है। तो यहाँ से अगर तीर या बंदूक से निशाना लगाते, क्योंकि बंदूक पहले नहीं होती थी, 400 साल पहले मुगल आने से पहले बंदूक नहीं थी यहाँ पे, तो उस समय इनमें से तीर चलाते थे, तीर कस कहलाते हैं। अंदर से बाहर निशाना लगाना और तीर चलाना एकदम ईजी है, लेकिन बाहर से अंदर दिखता नहीं है, तो ये दुश्मन को आराम से मार सकते थे, लेकिन दुश्मन इनको देख भी नहीं सकता था। और ये देखिए, ये भी इस काम के लिए, तीर बंदूक के लिए। और दुश्मन अगर नज़दीक आता है तो मैंने आपको बताया था, पानी और तेल गर्म करते थे, उबालते थे, वो गर्म पानी और तेल यहाँ से डालते थे, ये नीचे वाले होल, उबलता हुआ पानी, तेल और तेजाब डालने के लिए, ताकि दुश्मन किले की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करे या दीवार को तोड़ने की, तो एकदम उबलता हुआ पानी, तेल और तेजाब डाल के उनको जला डालते थे। और ये गोल बुर्ज इसलिए बना देता कि दीवार के पास में अगर दुश्मन खड़ा है, एकदम सीधी दीवार आ रही है, फिर बुर्ज है, फिर सीधी दीवार है, बीच में फिर बुर्ज मिलेगी, ये बुर्ज इसलिए बना देते ताकि दुश्मन अगर दीवार के पास में खड़ा है, साइड से उसको शूट किया जा सके, खुद सेफ रहेंगे, खुद नहीं देखेंगे, लेकिन दुश्मन को आराम से सेफ उसको उड़ा देंगे, शूट कर देंगे। यही वजह है कि कई बड़े अटैक हुए यहाँ पे, 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक यहाँ पे असंख्य अटैक हो चुके, लेकिन ये किला अजय रहा है, इसको कोई जीत नहीं सका है। लगातार 1000 साल तक 41 पीढ़ी हुई, एक ही वंश ने रेगुलर रूल किया, और आज भी ये फोर्ट जयपुर रॉयल फैमिली के अंडर में, जयपुर राज परिवार के अंडर में है, उनके द्वारा मेंटेन होता है। फोर्ट के जो मेन अट्रैक्शन है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो जयबाण हम देखने जा रहे हैं,

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: दोस्तों 1:37 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। और दोस्तों आज कार्यक्रम में करेंगे हम थोड़ी सी चर्चा, लेते हैं एक मेहमान को लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्ते।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो आप हमारे सभी श्रोताओं को आपका परिचय जरूर बताएं।
2: मैं हूं पायल, गंगापुर सिटी से, दयाल नगर मिर्जापुर से आपसे बात कर रही हूं।
1: जी पायल जी, आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे?
2: आज बात करेंगे हम अपने उन सच्चे दोस्तों की, जो हमसे बिना कुछ मांगे लेकिन हमें बहुत कुछ, हमें एक जीवन के रूप में बहुत कुछ देते हैं। मैं बात करूंगी पेड़ पौधों के बारे में।
1: बिल्कुल, बहुत
2: जो एक साल में सालों साल हमें बहुत कुछ देते हैं।
1: जी पायल जी, पेड़ पौधों में सबसे पहले आप ये बताएं लोगों को कि पेड़ हमें देते क्या है वास्तविक अंश रूप में।
2: एक पेड़ लगाओ, एक जीवन बचाओ। सबसे पहले तो पेड़ काटोगे तो मतलब अपना भविष्य काटना है। और पहले तो मैं सबसे एक बात बोलना चाहूंगी कि आज ही से पहले हम एक संकल्प लेंगे कि साल में कम से कम, ज्यादा नहीं पर, एक पेड़ जरूर लगाएं और धरती को हरा भरा रखें।
1: बिल्कुल, आपकी पहल बहुत ही अच्छी है।
2: और धरती को हरा भरा रखें।
1: बिल्कुल, आपकी पहल बहुत ही अच्छी है। अच्छा, सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, आपके मन में ये कैसे विचार आए हैं, मतलब एक पेड़ के बारे में ही बात करनी है आपको?
2: हाँ, ये विचार मन में इसलिए आया है कि सभी लोग हैं, आप हो, मैं हूँ या पूरी जनता है, कुछ भी चीजें होती है, आप कपड़े से स्टार्ट कीजिए, आप ज्वेलरी से स्टार्ट कीजिए, सब चीज लेंगे हम
1: जी।
2: हम अच्छी से अच्छी सब कुछ व्यवस्था करते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से संभाल के भी रखते हैं
1: जी।
2: लेकिन मैंने जो जीवन में देखा है या सोचा है, अपनाया है, वो ये है कि एक पेड़ है, अपन लगा तो देते हैं
1: जी।
2: किसी ने एक पेड़ के लिए अपन लाखों फोटो खिंचवा देते हैं, एक पेड़ के लिए 10 जन फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, लेकिन उस पेड़ को लगाने के बाद में उसकी देखभाल कोई भी नहीं करता है, ना ही उसकी तरफ जाके कोई देखता है, यहाँ तक कि कोई पानी भी नहीं देता है। तो केवल जो दिखावती आजकल जो बाहे आडंबरों की दुनिया चल रही है, उसी में ही हमने पेड़ों को भी गिन लिया है। लेकिन ऐसा अगर है तो इससे जीवन संभव नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। आजकल ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, कहीं भी चले जाए आप, सरकारी ऑफिस में चले जाए या प्राइवेट संस्थान में चले जाए, उसको एक मतलब ऐसा छोड़ के आ जाते हैं, उसकी देख रेख कम से कम

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
0: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर।
1: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
2: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
1: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
2: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
3: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाए।

0: अपनी पसंद से।
1: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।
2: दोस्तों 1:54 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के साथ आप सुन रहे हैं नए तराने कार्यक्रम। चलिए दोस्तों कार्यक्रम में मेहमान के रूप में आए पायल जी को कनेक्ट करते हैं और लेते हैं इनकी भाषा का और अनुभव का आनंद। हेलो
3: हेलो
2: जी पायल जी, आवाज आ रही है प्रॉपर?
3: हाँ जी
2: जी। बात पेड़ पे चल रही थी तो एक मुहिम चलाई आपने और बहुत अच्छा संदेश समाज को दिया और पेड़ के बारे में अच्छा भी है और लगाना भी चाहिए। तो एक चीज़ और बताएं मेरे को कि पेड़ के जो क्षेत्र पर मतलब शहरों में पेड़ों के लिए जगह कम होती है तो मतलब लोग कहाँ कहाँ लगाकर अपना प्रयास सफल कर सकते हैं?
3: अभी आपने लेटेस्ट चल रहा है लॉकडाउन के बाद से
2: जी
3: टेरेस गार्डन जिसे कहा जाता है इंग्लिश भाषा में, छत पर पेड़ लगाएं गमलों में
2: जी।
3: तो इसके बारे में एक भ्रांति फैली है, छत पे नहीं लग सकते, वजन हो जाता है
2: जी।
3: और मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं है, आप पेड़ लगाइए
2: बिल्कुल ज्यादा नहीं तो गुलदस्तों में और हम लगा सकते हैं, ज्यादा विशाल वृक्ष तो छत पे लग नहीं पाएंगे, वो चीज आप भी जानती है मैं भी जानता हूँ। पर हम मानते हैं कि अगर हमारे पास खाली प्लॉट है जब तक हम काम में नहीं ले सकते, साल दो साल पाँच साल उस जगह पे भी लगा सकते हैं, हमारे गार्डन में लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पेड़ हम हमारे स्थान पे ही लगाएं, पेड़ हम अगर सड़क के किनारे भी यदि हमारे पास है तो एक तरह से एक जैसे बालक को गोद लेते हैं उस तरह से गोद लेकर उस पेड़ को वहाँ भी नया जीवन दान दे सकते हैं हम।
3: बिल्कुल सही बात है आपकी।
2: आज सभी शहरों में सभी गांवों में भूमि होती है, चरागाह भूमि जिसको बोलते हैं, जहां वो एक तरह से पशुओं के लिए होती है और सरकार ने इसके लिए संरक्षण अधिनियम भी बनाए हुए हैं और सिवाई चक भी होती है, तो वहां भी हम अधिक से अधिक पेड़ों को लगाकर और भूमि का श्रृंगार कर सकते हैं। अच्छा समाज को कोई और संदेश देना चाहते हैं आप?
3: एक छोटी सी कहानी है जो मैं सभी को सुनाना चाहती हूँ।
2: बिल्कुल बताएं।
3: एक बार एक बच्चा है जो रोज एक पौधे में पानी देता था
2: जी,
3: लेकिन पास के लोग बाग उसे देखकर हंसते थे, क्या है एक छोटा सा पौधा है यानी कब जाके ये बड़ा होएगा, क्या करेगा इसका, क्यों पानी डालता है, क्यों वेस्ट करता है पानी
2: जी।
3: लेकिन 5 साल बाद अपन देखते हैं कि जो लोग बाग है जो हंस रहे थे, ज्यादा बोलने वाले लोग थे, वो उसी की छाया के नीचे बैठे
2: जी।
3: बस छोटे से काम भी बड़े बदलाव लाते हैं, आज भी
2: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हमारे स्टूडियो से कनेक्ट हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी।
3: बहुत बहुत

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

और दोस्तों नए तराने कार्यक्रम को यहीं करते हैं समाप्त, और थोड़ी देर बाद लेकर हाजिर रहेगी आपकी दीपा। भूले बिसरे यादों के कार्यक्रम को लेकर कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

दोस्तों वक्त हो चुका है, 2 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अब आप थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली विसरी यादें कार्यक्रम 99.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: लिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
0: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों इस कार्यक्रम को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगला कार्यक्रम लेके आते हैं हम बैक टू वेग गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल,
2: DS 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे
3: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
5: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप, शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
6: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
5: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
6: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
7: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
5: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

मेरे साथ ट्यून इन कर रही हैं रेडियो DSET 9.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन। यहाँ

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6।
2: मगर ये भी उतना ही सच है कि दिल को आपसे बेपनाह मोहब्बत है।

सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: बचपन पब्लिक।
4: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: Bachpan Public Secondary School, Gangapur City.
5: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
6: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
5: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
7: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
8: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वेक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डी।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 99.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैं हिनूर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो माई जी?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हद कर दिया आपने।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: समीर खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: नशे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ओ सनम।
0: ओ सनम।
1: हाँ
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा। हेलो।

0: हेलो हेलो।
1: परम आदरणीय पलक दीदी, सादर सा प्रेम प्यार से नमस्कार।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। रेडियो डीएस सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है राजस्थानी लोकगीत। और मैं आज आपसे एक राजस्थानी गीत की फरमाइश करना चाहता हूँ।
0: हाँ जी बताइए।
1: तू आजा परदेसी मारे गांव, गांव थाने याद करे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।
0: नमस्ते सर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सानू है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जीता था जिसके लिए मरता था।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो।

0: नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: पिया जी मेरा सूट से मांगे।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: करके।
1: पलक दीदी नमस्ते।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: विमल, ओनली विमल, मऊकला गंगापुर सिटी।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: गाना देखिए आपके चक्कर में मैं भूल गया फिर से, ए भगवान क्या गाना मैंने सोचा था, बहुत बढ़िया गाना, लेकिन अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, कुमार सोनू निगम का गाया हुआ है।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाई। दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। हर बीट में है शहर का कमाल,
2: DS89.6 शहर की धुन। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: जी नमस्कार जी।
1: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है एक नजर और गाने के बोल है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मेरी बहन
1: जी, वेलकम।

0: जी वेलकम सर।
1: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
2: धीरू भाई ठाकुर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
2: महू कला।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: जब हम जवा होंगे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते पल्लवी चौधरी, अर्ज कर रहा हूँ हावेली से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना तो सर वो
1: कौन सा सर?
0: बॉलीवुड का लाए, सुपर हिट लाए।
1: हाँ जी बताइए।
0: बादल पे चल के आ।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेशान

0: जी नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: हाँ जी, ठंडे राम गुजर बोल रहा हूँ, राम भद्रता से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तो कौन है, तेरा नाम क्या है?
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: का
1: गौरव
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: दुर्गापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर।
0: ओ कैसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा ना किसी हीरो के बच्चे।

0: मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
5: प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा, इसलिए अब अपने शॉप शोरूम या बिजनेस को दीजिए एक नई आवाज।
6: हम बनाते हैं ऑडियो और वीडियो एड्स, प्रोफेशनल मेल या फीमेल वॉइस में सिर्फ 30 मिनट में तैयार,
5: हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी और बहुत कम प्राइस में।
6: तो अब प्रचार कीजिए स्मार्ट वे में, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कीजिए और अपना एड बनवाए।
7: ऋषि मीणा, हमारे संपर्क सूत्र 9636718893 पर जरूर संपर्क कर बनवाएं अपनी पसंद से।
5: आपका प्रचार अच्छा होगा तभी तो व्यापार बड़ा होगा।

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ टून कर रहे 89.6 रेडियो ओडियास कंकापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों शाम के 7:01 का सम हो चुका है। फिलहाल आप कार्यक्रम सुनेंगे आप भजन संगीत भजन संध्या।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: हाँ जी मां।
1: ओए छोटू की कह रहे थी तू ऑस्ट्रेलिया चला गया?
0: थोड़ी होने वाली नूनू मिलना आया सी।
2: आ जाऊंगा परसों।
1: बेटा तेनू पता तो है अपने इत्थे ब्याह तो पहले मिलना ठीक नहीं।
0: चंगा संताली वाले हो, कहता रहा कि आ जाऊंगा मिल के।
1: हाँ
0: जी मां पहुंच गया।
1: चल जल्दी आ जी घरे।
0: आ जाऊंगा परसों। चंगा।
3: चॉकलेट
4: सरप्राइज।

जिंदगी दे विच दिन आखरी है मेरा, आज तो बाद तेनू कदे चेहरा देखना नहीं मेरा। मैं इश्क कीता सी ते तू वपार कीता सी, गलती तेरी नहीं, गलती ता मेरी सी, क्योंकि तू नहीं मैं तेनू प्यार कीता सी।

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

इसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: भाई उधर ब्याह हो गया।
1: इधर
0: एम्स्टरडम।
1: I want my girl back. Let's go Amsterdam.

0: देखियो दो प्यार करने वाले हैं।
1: ये मूवी की स्क्रिप्ट मेरे को नहीं आई सी, मूवी दी मूवी नू मैं ही लभ्या सी, मेरा ही आइडिया सीगा कि इहनू आपां जिहड़ी कहानी जदों मैं सुनी सी हिंद पाक बॉर्डरनामा दे उत्ते बेस फिल्म आ एक नॉवल बनिया होया, सो जदों मैं इहदी वन लाइन सुनी सी उदों मैं सोचा सी इस फिल्म नू बनाउणा है, सो इहनू बनाउंदे बनाउंदे 4 साल लगे। ये मूवी की स्क्रिप्ट मेरे को नहीं आई सी, मूवी दी मूवी नू मैं ही लभ्या सी, मेरा ही आइडिया सीगा कि इहनू आपां जिहड़ी कहानी जदों मैं सुनी सी हिंद पाक बॉर्डरनामा दे उत्ते बेस फिल्म आ एक नॉवल बनिया होया, सो जदों मैं इहदी वन लाइन सुनी सी उदों मैं सोचा सी इस फिल्म नू बनाउणा है, सो इहनू बनाउंदे बनाउंदे 4 साल लगे। ये मूवी की स्क्रिप्ट मेरे को नहीं आई सी, मूवी दी मूवी नू मैं ही लभ्या सी, मेरा ही आइडिया सीगा कि इहनू आपां जिहड़ी कहानी जदों मैं सुनी सी हिंद पाक बॉर्डरनामा दे उत्ते बेस फिल्म आ एक नॉवल बनिया होया, सो जदों मैं इहदी वन लाइन सुनी सी उदों मैं सोचा सी इस फिल्म नू बनाउणा है, सो इहनू बनाउंदे बनाउंदे 4 साल लगे। ये मूवी की स्क्रिप्ट मेरे को नहीं आई सी, मूवी दी मूवी नू मैं ही लभ्या सी, मेरा ही आइडिया सीगा कि इहनू आपां जिहड़ी कहानी जदों मैं सुनी सी हिंद पाक बॉर्डरनामा दे उत्ते बेस फिल्म आ एक नॉवल बनिया होया, सो जदों मैं इहदी वन लाइन सुनी सी उदों मैं सोचा सी इस फिल्म नू बनाउणा है, सो इहनू बनाउंदे बनाउंदे 4 साल लगे। ये
0: चाह बनाउणी आउंदी?
2: कॉफी?
0: बेबे कॉफी नहीं पींदी। पिनियां तां बना लेंगी?
2: पास्ता।
0: चलो जी तोर लो, महाराणी का मेन्यू नहीं मैच कर दिया। चाह बनाउणी आउंदी?
2: कॉफी?
0: बेबे कॉफी नहीं पींदी। पिनियां तां बना लेंगी?
2: पास्ता।

0: जंग मेरी कले की थोड़ी सी, ये जंग हर आम बंदे की जंग सी। क्यों
1: इन दो लोगों के मर्डर के बाद ही मैं तुमसे शादी

0: हेलो, हाँ जी डैडी, हूँ ही ग्राउंड डैडी। जड़ी जड़ी जड़ी उठ, जड़ी जड़ी फोन देख
1: यार।
2: महाराणी का मेन्यू नहीं मैच कर दिया।
3: फिर आप हूं की करांगे? हूं आप बेबे नु किवें मनावांगे?
2: खड़ खड़ सोच लें एक मिनट। हे परमात्मा दे कोई शक्ति, तू पता की कर
3: की?
2: तो फिकर ना कर, मैं चंडीगढ़ जाना ना, उतो आप दोवे कोई होर कुड़ी देख के ले आवांगे, है ना?
3: ठीक है।
2: हां
3: है कोई होर कुड़ी देख लांगे?
2: मतलब तू तू आपदी कोई सहेली देख ली जेड़ी वधिया चा पिनिया बना ले।
3: अच्छा,
2: घर का काम भी जानती होवे, तेरे तो थोड़ी सोनी भी होवे, है ना?
3: ले खा पानी ते पी।
4: फंक्शन ते बहुत वधिया रिया, पर पता सारे नाराज ने।
5: भी प्रोणा नहीं आया।
6: प्रोणा ले कर दने नाराजगी दूर, बस चलन लगा मैं।
4: रोटी खा ली?
6: हां रोटी तो खा ली सी मैं शाम तक पहुंचू। अच्छा
5: चलो ठीक है, आ जाओ फिर।
4: मेरा भी जी नहीं लगता।
6: जे यही गल तुसी राती कही हुंदी ना, मैं रातों रात ही आ जाना सी।
4: चल हुण फोन ते बहुतियां गल्लां ना मारी जाओ, आ जाओ छेती।
6: चलो ठीक है, ओके बाय।

0: भरा ना ही मिला दिए।
1: ऊ तो थारा भरा बहुत सियाणा।
2: मिट्टी ना खराब करी ताया, फूक रही इनू।
3: कल तक वापस आ जाएगा तू तो।

0: बिल्कुल नानकियां ते गया। एदा छोटा मामा भी इसे तरह दारू खिंचदा वड्डा।
1: हां जी बेबे।
0: हां किथे है मेरा मिर्जा पुत?
1: बेबे आने पे रस्ते जा।
0: जिद्दा मिर्जे ने घोड़ी दी रेल बनाई ही ना, उदा गड्डी दा जहाज बना के आ जाओ।
1: चंगा बेबे।
0: अच्छा गल सुन, ओ कुड़ी को लहंगा लूंगा हैगा ना?
1: ओ लहंगे तो दो ने आंटी, पर पम्मे कोल कपड़े नहीं हैगे। मैं कहना पर रिसेप्शन दो दिन आगे ना कर दिए।
0: चपेड़ा ना खाली मेरे कोलो। लीड़े पम्मे दे छड़, तेरे भी बना ले मैं।
2: सारे रिश्तेदारां नूं कहता,
0: ताडे सारे यारां दोस्तां नूं फोन मारते आ।
2: बंदे दे पुत्त बन के ना
0: पैलेस च आ जाओ सीधे।
1: ओका

0: दोस्तां के दुश्मन यार, कुड़ियां पिछे यार नशेड़ी बनाता, वो कुछ तो सोच लैंदा यार।
1: हाँ जिवें तू सोचता ना,
0: ते मोनिका नूं की कहा तू है?
1: ओ मोनिका आप छड्ड के गई आ, वधिया नाले मैनूं जोर नहीं लाउणा पिया।
0: जे इन्ना ही जोर आ ना तां हुण ला ला,
1: जे लोड़ पई ना ला भी लूंगा
0: ला फिर।

0: वर्गा यार होवे ना वह कुड़िया पिछे छाल मारूगा।
1: जे इदा ही चलता रहा ना मैनू लगता छाल मैनू मारनी पैनी आ।
0: क्यों तेरे को यार मैं नहीं है
1: तेरे करके तो मारनी पैनी आ।
0: की हो गया भरा मैं किया इदा का?
1: यही तो गल आ तेन कुछ पता नहीं हों तू करता की आ ना तू कि कुछ समझ की कोशिश की आ ना तू पिछले छे साल कोई कुड़ी वेखी मेरे न।
0: दस वीरे कि कुड़ी पसंद आ तेन?
1: जे सारिया गल् मैं समझाव तो यारी शिकू दी नाले जिहड़ी कुड़ी मैनू पसंद आउंदी उसे नू तू पसंद कर लगना।
0: जग्गी केड़ी कुड़ी दी गल करी जाना यार?
1: ट्विंकल ज्यादा प्लस वन वाली ओहदे नालों मैं तड़ाई सी तेरी

0: गेम शो डार्लिंग,
1: गेम शो डार्लिंग।
0: हाँ
2: तो
3: वैसे आपका नाम क्या है?
1: घर तक पहुंच गए? पीछा कर रहे हो मेरा?
4: नहीं बहन जी, हम तो
1: क्या हम कहा था ना, मैंने नहीं चाहिए पैसे।
2: तुम उसे जानती हो?
1: मेरे बस में था, पीछा करते करते घर तक पहुंच गया है बदमाश।
4: बहन जी, हम बदमाश नहीं है और ना ही हम किसी का पीछा कर रहे हैं। बचक बली की कसम, अरे हम तो प्रतापगढ़ से आए जयराम जी से मिलने के लिए।
2: कौन हो तुम?
4: हम पवन चतुर्वेदी, नीले पाठक वाले चतुर्वेदी साहब के बेटे।
2: चतुर्वेदी जी के बेटे?
5: तेरे रूप नु मथा टेकने
1: घर तक पहुंच गए, पीछा कर रहे हो मेरा।
4: नहीं बहन जी,

0: एक गल दस, तू इन्ना सही निशाना किवें ला लैना?
1: ओदे लई असले नूं मशूक बनाउणा पैंदा है ते बरूद नाल मुहब्बत करनी पैंदी है।
0: मैनूं सिखा देगा?
1: मुहब्बत कर लेंगी।
0: एक गल दस, तू इन्ना सही निशाना किवें ला लैना?
1: ओदे लई असले नूं मशूक बनाउणा पैंदा है ते बरूद नाल मुहब्बत करनी पैंदी है।
0: मैनूं सिखा देगा?
1: मुहब्बत कर लेंगी।

0: बर्थडे पर इतने सारे गिफ्ट देने वाली बहन तो हर एक भाई डिजर्व करता है। चलिए साथ में अनबॉक्स करते हैं इन गिफ्ट को। तो ये है मेरी गंदी सी दिखने वाली बहन, इसने मेरी पीठ पीछे मेरे बर्थडे पर पूरा की पूरा विला बुक कर दिया, साथ में इतनी अच्छी डेकोरेशन, केक और बहुत ही मजेदार तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। पूरे परिवार के साथ खूब मस्ती मजाक करी और साथ ही मेरी पलटन और इसने मुझे बहुत सारे मजेदार गिफ्ट दिए, जैसे कि ये मेटा AI ग्लासेस, करंटली ड्रीम ग्लासेस ऑफ एवरी बॉय। इन्हें लगाकर आपकी एक तीसरी आंख भी एक्टिवेट हो जाएगी। इनमें मस्त स्पीकर है और सबसे खास कैमरा है जिसकी क्वालिटी आप देख लीजिए, जैसे आप मेरी तीसरी आंख यानी मेटा AI ग्लासेस से वीडियो शूट हो रही है। लड़ने का तो नहीं पता मगर ये चप्पल क्यों मारी भाई। हेलो दोस्तों, सैल्यूट है आप सभी को। और दोस्तों मैं इन ग्लासेस के AI से कुछ भी पूछ सकता हूँ।
1: हे मेटा, क्या मेरी बहन पागल है?
2: बहुत बड़ी पागल है।
0: एकदम करेक्ट। और इसने मुझे ये मजेदार से कलरफुल सॉक्स दिए। ए लड़ाई मत कर, पैर मिला के प्यार से रहते हैं यार। और इसने मुझे अपना

0: क्या रे भीख मंगिया?
1: गजब बेइज्जती है
2: इसकी माँ का।
3: जरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
4: ठीक है।
5: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
6: भारी मिस्टेक हो गया सर।
7: जब नौकरी मिलेगी तो
8: मजा आया
9: नहीं।
10: अरे क्या
11: क्या करूं मैं इसका?
8: गुड बाय गया खत्म।
12: जन का इंतजाम करो, जशन हो।

कोई पुलिस वाला नहीं है जो नजर उठा के अपन के साथ बात कर सके। मुंबई पे राज करता हूँ राज। क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? अरे तू क्या समझेगी, छोड़ना।

0: सर, आप जो ये सब करते हैं इसके लिए वीडियोस क्यों बनाते हैं?
1: इसीलिए बनाते हैं कि लोग ये चीजें देखें, बहुत सारे बच्चे हैं और ऐसा काम वो भी करें। मैं अकेले कितनी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, भले ही मेरे पास हजारों करोड़ हो, मैं कितने ही लोगों की मदद कर पाऊंगा। ये वीडियो देख के बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे, वो भी आए 50-100 रुपए की, वो भी मदद करें और ये एक पूरा मूवमेंट हो जो फैल जाए। देखिए, एक आदमी से नहीं होगा, जब ये मूवमेंट बनेगा ना पूरे देश भर में, तब मुझे लगता है मैं शायद कुछ 1-2% बदलाव ला पाऊँ। असम आने के बाद मुझे जो एहसास हुआ ना कि फिजिक्स वाला बना के मैंने जो भी किया था, यहाँ लोगों की मदद करके जो खुशी मिली है, मेरी माँ ने मुझे फोन करके जो बोला है कि इतनी खुशी कभी नहीं हुई अलग, मतलब तुम कितने भी बच्चे को पढ़ाओ, तो मैं तो अब जीवन भर यही करने वाला हूँ। तो अगर आपको सच में मुझे सपोर्ट करना है तो आप भी अपने आसपास ये काम करो और जितना भी 50 रुपए का हेल्प कर दो।
0: सर, आप जो ये सब

0: कैमरामैन जल्दी फोकस करो।
1: अरे मम्मी रे, बाप रे,
2: दिल है आखिर कहाँ।
3: सुबह सुबह मेरी बहन राखी मेरे पास रोते हुए आती है क्योंकि घर में इसके लिए स्कूटी खरीदने की बात चल रही है, तो ये चाहती है कि इसके लिए अभी आ जाए।
4: जिद देख रहे हो इसकी।
3: इसे शांत करने के लिए मैं इसे चिक्की पकड़ा देता हूँ। थोड़ी देर बाद ये मेरे पास खोए का लड्डू और पिस्ता लेकर आती है और दोनों बैठकर फिर खाना खाते हैं। दिन में पता नहीं कैसे मेरी आंख लग जाती है और आंख खुलती है तो मैं
5: खाली बैठा तो सोचा तुम लोग को कुछ

0: मेरा ब्याह उदे नाल ही होगा जिन्हू मैं
1: टॉप थ्री ऐसी बैंड पंजाबी मूवीज जो कि यार इंडिया में ही बैन कर दी गई। नंबर थ्री बब्बू मान की हवाएं, जिसमें कि 1984 के दंगे सिख जेनोसाइड को दिखाया गया था जो कि यार मूवी के बैन का कारण बन गया। अगर आप इस मूवी को बिंदास यूट्यूब पे देख सकते।
2: मैंने नहीं पता सी पंजाब इतनी सोनिया था भी नहीं।
3: केड़ा पंछी है? केड़ी टहनी ते बैठा है? दोबारा बोलेगा? ची ची ची ची। केड़ा पंछी? अच्छा पंछी नहीं का बकरा है। हेलो दर एड्डा तेनू पंछी बनने दा शौक? ची ची ची ची। और तेनू मैं बनानी है बंदा, तू ना फिर
4: ठहर जा।
5: मैनू लगदा आई नहीं है।
6: आहो
7: पी वज दी
6: बजा के देख ला।
7: ओ तेरी भैनु वड्डे लवाए।
8: ओए ऐसे कर दे, मैं तेरे को कैसे ना आ जाके
7: छोटे वीर माफी के मैं चाहिदी हाथ जोड़ के जा लिख के।
6: ओ भरावा तू मेनू माफ कर,
7: मेरी निगाह तेरे ते।
6: वड्डे लवायू आ जा हुण।
7: चल तेरी प्लेटा ध्यान ना गिणिया घट गिणा ताडे जो मैं पाऊंगा। रुक रुक रुक किधर मुंह चक्या नवा कढाया?
6: आहो
7: पी वजदी।
9: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ
10: ਕਰਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਓ ਮਾਮਾ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਤੀ।
9: ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਆ। ਓ ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰੂਟਾਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ ਐ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਪਸਾ
11: ਖਾਸੜੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮੈਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
6: ਓ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ
12: ਸ਼ਾਮੀ ਪੀਣੀ ਹੈ
9: ਫ੍ਰੀ ਚ
11: ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
9: ਖੌਂਸੜੇ ਖਾਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅੱਕਾ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ
11: ਮਰਚੇ ਹੋ ਜਾ ਖੈੜਾ ਛੁੱਟੇ ਤੋਂ।
9: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ?
6: ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ
9: ਦੀਪੇ ਚੱਲ ਚੱਲ
6: ਚੱਲ
8: ਠੀਕ
6: ਪਹਿਲਾ
7: ਪਲੇਟਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਗਿਣਿਓ
8: ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਲਵਾਈਏ।
6: ਨਹੀਂ

0: ओए ओए अरे अरे आ गया की है ओए सत जमा पांच बारह होता तेरा नहीं
1: नाले पिछले मास्टर ने पढ़ाया सी बाबे नानक ने तेरा तेरा ही कीता है
0: ओए अकल दे आने आ ते जोर घटावा है ओ बाबे नानक दा लेख सी
1: मतलब फर्क हुंदा ही है ना जी
0: आहो हुंदा
1: नाले कहंदे बाबे नानक ने कदी किसे च फर्क ही नहीं कीता सवेरे सवेरे गुरुद्वारे वाला बाबा भी ऐ कहंदा सी
0: ओनू जाके पुछी कदे बाबे नानक दे दसे रास्ते ते चलिया ओए ओए पढ़ लो नहीं डंगरां नू कख पौण जोगी रहूंगे
1: डंगरां नू कख पौणा माड़ा काम है जी यार मेरा बापू तो सरपंचां दे कख पाई जांदा ये तो मतलब था बहुत माड़ा बंदा यार मेरा बापू तो
0: माए गल जोड़ घटाउदी करी है तुसी डंगरां दे पिछे पै गए पढ़ जाके पढ़
1: जा बड़ा मास्टर
0: ओ गल सुन लो मेरी सारे जाने मैं अज थानू सिखाउण लग्गा पहाड़े सुनो तो देखो तीन सताई चार
2: दसना मैनू भी नहीं पता
0: ओए तुसी भी बोल लो कुछ
1: पैंती जी
0: शाबाश वेरी गुड चार ना है पैंती
3: एक गलत है जी नौ चक्के छत्ती होंदे ने
0: वेरी गुड शाबाश मैं यही टेस्ट लेंदा सी भी तुसी गलत नू सही तो नहीं कहते वेरी गुड शाबाश नूर
2: मरवाई दिता सी
0: तू कख ही पाएगा ओ मेरे वाल वेख के की हाथ दे पढ़ लो नहीं नौ चौके सैंती भी हो सकता

0: सर चाह जी।
1: वैसे मैंने एक गल समझ नहीं लगी।
0: केड़ी जी?
1: जे तू सेवादार है।
0: हाँ जी।
1: बच्चियां नु को पढ़ा रहा सी?
2: ए पढ़ा नहीं जी, उलझा रहा है।
0: मैं मत्थे चटरे मारूं तेरे। पहले मास्टर ने कख नहीं सिखाया जी।
1: फिर
0: मैनू पता लग गया सी भी तुसी 3 दिन बाद आ रहे हो। पेपर ने ना जी इन्ना दे।
1: अच्छा।
0: मैं तो जी सेवादार हां, अपनी सेवा निभा रहा सी। बिना दिमाग पढ़ाई च लग्या रहे, थोनू पता ही है जी। नहीं तो फिर इना दिमाग स्कूल च बाड़ने ही औखा
2: है। ए गोरे दा दिमाग ता जी रोटियां वाले डब्बे च पिया है।
1: डंडा देखदा?
2: हां जी, खासा मोटा है जी।
1: चुप। इन्हां नूं कौन चुप कराऊ हुण? ए भी स्कूल च पाड़े पढ़न आउंदियां। किदियां ने ए?
0: जी सरपंच साहब दियां।
1: सरपंच ने क्यों बनियां इत्थे?
0: क्योंकि ये सरपंच दियां ने।
1: बनियां क्यों ने सरपंच ने इत्थे?
0: क्योंकि वो सरपंच है।
1: ते जे वो सरपंच है मजा इत्थे बनू।
0: हां जी,
2: होर किथे बनूगा जी बेचारा। नाल थोड़ा दा फायदा ही है।
1: फायदा? फायदा कदा?
2: आ जेड़ी तुसी चाह पी रहे हो ना जी, एना दही दूध दी है।
0: असल च जेड़ा पहला मास्टर सीगा ना जी, वो दूध ता दूध, दही भी ना दूध ही खांदा सीगा जी।
2: मज्जा तारी क्लास स्टैंड कर रही ने जी।
1: तू बहुत शरारती है, टिके बैठ।

0: नाम की है सरपंच दा?
1: ओए हाँ कम सिंता सरपंच बने ही थोड़ी हैं दोख तकलीफा दूर कर वास्ते है।
2: सरपंच साहब कल मेरी समरसीबल की निरत की चाया।
3: ओ सरपंच साहब मेरा तो घर ही जमा छपड़ते है, लोग सारे तड़के तड़के आके इत्थे टट्टी बह जांदे ने। ओ पानी नाल तो मेरे घर दा माहौल ही ज्यादा गंदा होया पिया।
2: सरपंच साहब किवें कमें करके टोबा बंद करो।
3: ले जे टोबा बंद हो गया फिर मेरी ते सरपंच दे मैं सख्त नहीं होणगे भला।
2: आ कलियां मज्जा नहीं नहाउण गियां, आ मलेरिया ने सब नु नहा लेना। फिर
1: मैं करता समस्या का कोई हल, तुसी चिंता ना करो।
4: ओ सरपंच साहब आपा भोग ते भी जाना सी, लेट हो गए।
1: ग्रांट आई नू 6 महीने हो गए, टोबे वाला काम शुरू क्यों नहीं कराया?
5: सरपंच साहब पिछली ग्रांट च आपा लैटरियां दा पैसा वध खा गए, उन्हां दा हिसाब किताब करना सी, एक किस्त उत्थे खर्च हो गई।
1: हुण फिर
3: ओ तुसी परवाह ना करो, कल नू दूजी किस्त आ जूगी, मैं काम शुरू करा दूंगा, ये केरा टिक जाणगे।
1: आहो ओ घट्टो घट्ट कागजां तां टोपे दा काम शुरू होवे।
4: कोई ना, दो ट्रालियां तां कल ही सटा दिंदे
1: आ। कोई गल नहीं, तुसी ऐ करो आ दो ट्रालियां तां कल ही सटा दो बस, ओ ताकि इहनां नू जवाब देण जोगे तां होईए।
6: आ ले फड़ लाला, मिर्चां वी पा दे दो क, मरदा तां नहीं।
7: लै पापियां आ फड़।
6: आ ले पैसे,
7: पिछले पैसों का भी कर दो।
6: आहो आहो पिछले भी है सच,
7: होर
6: करदा कोई नहीं।
7: आ गया वेलड़, कटता सवेरे सवेरे।
8: ओके मियां सेठा, पहले ते कपड़ा कपड़ा ता मार ले कर बहना हुंदा किसे ने।
7: तू मार ला वेलड़ा।
8: होर सुना?
7: मैं ता ठीक हां, कटता सवेरे सवेरे भरजाइयां ने घरों, देके दखू दाना। आ की करी जाना?
8: ओ खा लैण दे यार।
7: लै खा लैण दे, क्यों
8: तेरे कोल ता वादू ही पए ने। आ गई हां,
7: आजो आजो आजो आजो आजो आजो। वाह भी वाह,
9: फड़ा दे लाला।
7: ओ चॉकलेट ता दे देना, पहला चिड़ी वाली कहानी सुनाओ। चलो
9: चिड़ी वाली ता याद नहीं।
8: ओ चल जेड़ी आउंदी आ ओ सुना दे।
9: चिड़ी वाली सुना देने आ।
7: सुना दो फिर।
9: चिड़ा बेचारा की करे, ठंडा पानी पी मरे। एक पिंड च एक चिड़ा रहिंदा सी, चिड़े हुणी तीन भाई सन, उन्हां कोले 30 किले जमीन सी। चिड़े दे दोवे भाइयां ने व्याह करवा लिया, पर चिड़े दा ना हुण दित्ता। बेचारा चिड़ा अपने भाई भरजाइयां दी गधे वांग सेवा करदा रहिंदा।
8: फिर
9: बस वर सवेरे सवेरे छत्तर खा के किसी दुकान ते बैठा रहिंदा।
8: ओ सेठा यार, ये कहानी मैनू मेरी नहीं लगती।
7: लगती नहीं, तेरी हो ही आ।
4: मेरे ते तबादले मेरे में हर दिन जाओगे कि आ गया तुम ही होना।
1: ओए अजे ता मेरे सरपंची दे अद्धे पैसे पूरे नहीं हुए, तुसी पिंड च पार्क बनाउण नूं फिरदे हो।
3: ओ पूरे ता साडे भी नहीं हुए सरपंच साहब, पर उत्तों डंडा चढ़िया होया। ओ पार्क वास्ते खाली जगह ता घट्टो घट्ट दिखाउणी पऊगी।
1: ओ मैं सिमे वाली दबण नूं फिरदा।
10: सति श्री अकाल सरपंच साहब।
1: इस घर नूं अपना ही घर समझो,
11: जिवें असीं स्कूल नूं घर समझदे अपना।
10: इहने साडे पिंड दे सरपंच साहब।
11: धन्यवाद
0: बाकी रही गल स्कूल दी।
1: मेरा बच्चा आ गया, आ गया, आ गया, आजा, आजा, आजा, आजा मेरा पोलू काका। ए जी मेरा पोता हंगामा पब्लिक स्कूल च पढ़दा। अच्छा ऐ कर, सारे नूं अंग्रेजी च हैलो कह।
12: हैलो हैलो।
3: वाह अंग्रेजी च हैलो, कमाल करते निके जे बच्चे ने। देखो है
0: पोता किदा फिर।
1: मेरा पोता है। अच्छा मास्टर जी इहनूं कुछ भी पुछो, पुछो पुछो पुछो
0: पुछो। डो सरपंच साहब कोई ना, मैनूं लग गया पता।
1: ओ नहीं नहीं नहीं, कुछ तां पुछो पुछो।
0: ओ कोई ना सरपंच साहब, मैं किते फिर पुछ लूंगा।
1: ओहो मास्टर जी पुछो तां सही।
0: सरपंच साहब पुछा की, कहनूं जवाक नूं तंग करदे।
1: तुसी एनुए पुछो भैया ते मम्मी डैडी दा की नाम है।
0: हाँ पुत तेरे डैडी दा की नाम
9: सरदार सुरजीत सिंह
0: ते मम्मी दा
9: सरदारनी बलजीत कौर
1: ओ मास्टर जी पंजाबी च नहीं अंग्रेजी च पूछो अंग्रेजी च पूछो मम्मी डैडी दा नाम
0: व्हाट इज योर फादर नेम
9: सरदार सुरजीत सिंह
5: वाह सरपंच साहब इन्हें अंग्रेजी च भी अपने डैडी दा नाम पता देख लो है
0: एंड मदर नेम
9: सरदारनी बलजीत कौर
5: बा कमाल
1: बा बा कमाल ता सारा प्राइवेट स्कूल दा है
0: वो तो देखदा ही है
9: दादू हा? मैं अंदर जाऊं मैंने अपने स्कूल का काम करना है
1: जा पुत
5: सरपंच साहब आप प्राइवेट स्कूल च ना हिंदी वाला काम ठीक नहीं इन्हें जवाक नु पोला या करन दे पोलड जा
0: हुण प्राइवेट गल छड़ के ते सरकारी गल कर लिए
1: सरकारी गल है
5: सरकारी गल
1: सरकारी गल है केड़ी सरकारी गल
10: साडी ता जी एक बेनती है
1: करो बेनती
10: आ जेड़ियां थवाडियां मज्जां स्कूल च बन्नियां होईयां ने ओना करके पढ़ाई च बिघन बहुत पै रहा है बस आही बेनती करनी सी भी उहनां नूं उत्थों खोल लियाओ
0: कल तक अपनी मझा खोल लियो ऐ ना होवे मझा दी जगह ते संगल ही रह जान
1: संगल ता नवे भी ले लांगे पर कीले उत्थे रहणगे
0: ओ भी पटने आउंदे मैनूं उंगली टेढ़ी भी करनी होती है सत श्री अकाल
5: हाँ की कह गया सरपंच साहब सैना बंदा था चमचा भी यूज कर लूगा की लोड़ उंगल लवेड़न दी है ए मास्टर भी मन तक कमड़े लग गया

0: जय हिंद।
1: बैठो बैठो बैठो बैठो।
0: थैंक यू सर।
1: ओए आ की है? क्लास है के सब्जी मंडी?
2: मास्टर जी ये सारा कुछ ढाडे लिए आ।
1: क्यों किते भंडारा लग गया है?
3: ओ नाना जी किते भंडारा भंडूरा नहीं लगया, मैं दादा थानू असल गल की है।
1: हां दस की गल है?
3: आ जेड़ा बलदेव मास्टर सी उनू पुठी हाथ पई हुई सी जवाका दे घरों समान मंगाउण दी।
1: पर मापे ऐ क्यों करदे यार, ये गल नहीं समझा मैं।
3: ओ मास्टर जी तुसी बाले भोले हो, ओ बेचारे डरदे सी वी किते साडे जवाक ना फेल कर देवे। गरीब बंदे डरदे समान दे हीगे।
1: हद है यार, जे टीचर दी आ सोच है ते बच्चियां नू सुआह पढ़ाउणा। बच्चे हो घर जाके अपने माँ बाप नू कहना के अज तो बाद ये समान भेजन की कोई लोड़ नहीं।
2: फिर मास्टर जी पास किवें होवांगे असीं?
1: ओ पास होने लई तां पढ़ना पऊ, जिहड़ा विद्यार्थी पढ़ूगा पास उही होऊगा, नाले फर्स्ट सैकेंड ते थर्ड आउण वाले नू इनाम भी मिलू।
3: आ मास्टर जी इहदा की करिए हुण?
1: जो बाबे नानक ने कीता सी।

0: मास्टर जी अज एक गल तो पता लग गई, जिमें माँ बाप तो बिना बच्चा अधूरा होंदा, एक सच्चे गुरु बिना बच्चा पूरा नहीं हो सकता।
1: हरी जे बूटे दी जड़ां मजबूत होणगियां बूटा ता ही फल दऊ, इसलिए जरूरी है कि सही समय ते सही मात्रा च बूटे नूं पानी पा दिता जाए।

0: आ की है
1: मिड डे मिल है जी।
0: ओ इच तां सुसरी पई हुई है।
1: सच पुछो सुसरी नहीं जी, सुसरा पिया होया, वह भी 6-6 फुट का।
0: मतलब?
1: मतलब सरपंच जिहड़ा मिड डे मिल दा राशन मिलता आपदे घरे रख के बह जांदा।
0: ते आ समान जे च सुसरी पई हुई है कित्थों आया?
1: ये भी सरपंच दे घरों जी, जिहड़ा बचिया कुचिया हुंदा उरे चुका दिंदा।
0: हद है यार, जिहड़ा समान स्कूल च आउणा चाहीदा उहदे घर किवें पहुंच गया यार?
1: बलदेव मास्टर, सरपंच ते बलदेव मास्टर दोवें रले होए सी। दोवें सुसरे कई कणक दे ते चौलां दे ढोल खा गए। मास्टर जी
0: हाँ जी,
1: करो कोई इन्हां दा वी हल।

0: मास्टर जी भी बस मैनू लगता जी अजे भी तुसी बच्चियां दे सुपनियां बारे सोची जाने छड्डो जी चाह पियो
1: नहीं यार जे सुपने इहो जे ने फिर पढ़न दा ते पढ़ाउण दा कोई फायदा नहीं
0: ये सुपने इन्हां दे नहीं जी इन्हां दे मां बाप दे नहीं
1: मां बाप दे ओ क्यों
0: ओ जी सारे सीधे साधे ते अनपढ़ लोग ने उन्हां बेचारियां दी सोच ए नहीं कि उन्हां दा बच्चा भी अफसर लग सकदा उन्हां नूं तां हुंदा भी बस हिसाब किताब जे आ जाए ताहीं तां पंजवीं तों बाद कोई पढ़ाउंदा नहीं

0: सरपंच दे घर नहीं गया?
1: ओदे घर तां मैं दो तीन बार जाया आ, ओदा सौरा ऐतकी फेर मिड्डे मिल खाण नूं फिरदा।
0: इहदा मतलब बच्चां दे खाण नूं अज फिर कुछ है नहीं। तूं इदां कर, बच्चां दी अद्धी छुट्टी सारी कर, आपां सरपंच दी बैल बजा के आउंदे आ।
1: ठीक है जी।
2: खाले बिलो खाले, माड़ी हो जानी है तू। सोनिया ओ तू भी खाले। ओ सत श्री अकाल मास्टर जी, जी आया नू। ए, स्कूल छुट्टी है?
0: नहीं।
2: फिर
1: करती
2: क्यों? मतलब
0: बच्चे दे खाने दा समान स्कूल तू ही भेजा नहीं ते असी छुट्टी करती?
2: चंगा किता, ऐ करो उन्हां नू हफ्ते दी छुट्टी कर दो, कानू मन खराब करना है जी।
0: अंतत तुसी खराब कर रहे हो।
2: मैं खराब कर रहा हूं? अच्छा अच्छा अच्छा। कानू जी, मैं तरफ दे दी अंदी सेवा कर रहा बस। हाँ
0: बेनती आ कि कल तो पूरा समान स्कूल पहुंचे, नहीं तो थोड़ी सरकारी सेवा होंदे टाइम नहीं लगना।
2: कानू तुसी मेरी मज़ा दे मगर पए हो जी, पहला तुसी इन्हां दा घर छड़ाता, हुण इन्हां दा खाना भी छड़ाउणो फिरदे है जी। इन्हां ने की बिगाड़िया थोड़ा, की करन गिया है?
0: मज्जां दा ते पता नहीं सरपंच साहब, पर थोड़ी सरकारी रोटी मैं पक्की करा दूं।
2: चाह पी लो।
0: मेहरबानी।
2: सत श्री अकाल। चलो यार, मास्टर दा तां बनता है, छलेडा जा कदी हवा कर। ओए पा दे, दुध देना नहीं देना, मास्टर ने नहीं देना। हाँ

0: वैसे तो मैंने इस गल बारे पहला ही पता सी, पर जे कुत्ती चोरा नाल मिली होवे तां की कीता जा सकदा है। पर मैनू वधिया लग्या कि तुसी इत्थे आए। तुसी एप्लीकेशन भर दो ते बाकी सब मेरे ते छड़ नाले। हाँ, मैं आप ही स्कूले गेड़ा मार दी रवांगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हो सके तो जल्दी गेड़ा मारे।
2: भाई कितने हो गए?
3: 250। ब्राड़
2: हैं?
3: किदा की हाल है
2: बलविंदर?
3: बले तू इधर कि?
2: ओ यार नाल दे पिंड मेरी साली रहिंदी है, उत्थे चलिया सी।
3: ओ साली नू फिर मिल ली, एने दिन बाद मिले। आ चाह दा कप पीने आ।
2: पी लैने आ।
3: आजा
2: बलविंदर। यार टीचर बनता गए पर लै पंगा ही लिया।
3: होर यार जड़ियां प्रॉब्लमां मैं इत्थे देखियां कदी दिमाग च नहीं आईयां। कदे मिड डे मील दा रौला, कदे सरपंच दा, कदे जात पात, कदे अमीरी गरीबी।
2: हाँ मैं सोचा सब खत्म हो गया होना है, पहला धरने ला ला पुलिस दी डांगा खाई गए, हुण तनखाहां पिछे खानियां पैणियां।
3: जे बच्चे नूं कुछ कहो तां प्रॉब्लम, जे बच्चे नूं ना कुछ कहो तां प्रॉब्लम। जिथे पंज मास्टरां दी लोड़ है उत्थे इक्को ने कम चलाई जांदे, ते उहनां नूं वी किसे होर कम ते लाया। दसो
2: मेरा तां यार पिछला सारा हफ्ता मरदमशुमारी च लंघ गया, जवाकां नूं मैं सवाह पढ़ाउणा सी।
3: हले वोटां रेडी ने, तूं ते फिर वी ठीक है, तेरे स्कूल च दो टीचर है, मेरे वाले च एक ही है। तू छुट्टी लै सकदा, मैं ते छुट्टी वी नहीं लै सकदा। चल छड़ यार, होर सुना भाभी दा की हाल है?
2: ओ यार बुरा हाल है, स्कूल च सरकार नहीं टिकन दिंदी, घरे ओ अखे जी तनखाह नहीं आई। तू दस।
3: मैं भी देखदा यार, हले नौकरी वाले पासे ध्यान है, हले सोचदा भी छुट्टी दा भी विआह हो जूगा, फिर करदा कुछ।
2: ओ यार मिठा घट पाया करो चाह च।
4: ओ तुसी कोई चज दी खबर भी लाया करो कदे।
5: चज तो मैनू मास्टर दे ठीक नहीं लगते सरपंच साहब, पहला स्कूल चो अपनी मझां खड़वातियां, फिर मिड डे मील, ते हुण शिकायत करती, ये आपां नू लैके बैठू।
4: ओए उहनू साडी पहुंच दा जे पता नहीं, देखदे आं किहड़ा अफसर आउंदा। ओए मैं तां इक फोन घुमाउणा बस। हां टेंशन ना लो, चलो।
5: नाले सरपंच साहब अज वीरवार आ, दरगाह ते चौल भी चढ़ाउणे आ।
4: चढ़ा दिओ, लै जाओ। ओ बलिया चौलों की बोरी बाहर छड़ के आ।
5: दरगाह ते चढ़ाउणे आ सरपंच साहब, पुन्न की थां ते पाप ना करो।
6: चौल उत्थे बंदिया ने खाने ने, जिन्ने औरां ने नहीं।
4: ओए हलवाई नूं कह देंगे भी धो के बना लै, नाले सुसरिया च किहड़ा हड्ड हुंदे ने, हैं जिहड़े बंदे दे मूँह चढ़ जाणगे। रब दे जी ने बेचारे। हां लै जाओ।
5: वाह धन्नो तुसी सरपंच साहब।
7: खेलने जाना है?
4: हाँ बेटा मैं तुम्हें अभी छट कर आता हूँ।
6: ओ बा सरपंच साहब तुम किता हिंदी बड़ी चंगी होगी।
8: ओए हिंदी तो ठीक है, किते पंजाबी ना खराब हो जे।

0: सस्काल बेबी प्यारी पहना
1: जोंदा रे होर ठीक है रोटी खा ली तू
0: हां जी रोटी खा ली बस सोन लगा सी
2: बेबे
1: अच्छा पुत मैं तेन फोन आए लाया सी भी जेड़ा प्रीत लई आपा मुंडा देख रहे हां ओ कल नु थोड़े नाल दे पिंड आऊगा
3: अच्छा
1: तू ओथे ओनु मिल के गलबात कर ले पता लग जू बंदा कहे जाए
0: पर कल तो बेबे मैं स्कूल जाना है कल दा औखा हो जू मैं फिर किसे दिन जाऊं
1: अगले ना जवाब ले काली कर रहे ने जे कल ना गया तो तेन 2 दिन की छुट्टी लेनी पौगी